0: ये यमगा
1: नेगो ओइ लचराउ काना
0: किता पे याम
1: ओन जरा ये नेगो
0: के या किराम नन नन सर्विसेस पीपीए
1: हेन आया रे इबुगिनि किदारे नन काना न तुरबिया के ननम आ देइता किना कोन मार्केटिंग एट pba.top.kai
0: के मेसेज न कोन नन फेसबुक पेज पीपीए ए ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिकेशंस अथॉरिटी के पीपीए मेरी एफएम 89.9 के कुबुनि कोन नन बेंडेता किना कोइरन दे टेलीफोन नंबर ए ओनो व तेनुआ किया तेनुआ आकिया तो वाना नि मेवा किया किन पुन रोहो नन अकाउंट द पीपीए पाइरि किन निकारिन तंग तंग इम केम का आ ने नन सर्च इन बॉक्स पीपीए अरे एक Royal Ipukin.
1: Weapon!